चक्कर लगे चक्री जी चले खसमे पाए मत दिसनो अगली वजो बेल ना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाए अगला मोय मो पाना खाए जिसका दिता खावना तिस कहिए सबा।

रंग प्रंग अनेक ना जापन करत बा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेरे अपना आप।

गए मशक्कत का नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी न जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल

0: रंग परंग नेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर पला तेरा कर नंद वधाई तुद कर मान महता ते जापना आप जर सर्व कला भरपूर दे सजत कता नानक दर्शन दास तुदया गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगन जगत।

0: तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता।
1: सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दो दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचै तर महदूर करनी आपो अपनी केले रखै दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए

जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम, शरण परे की राख जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम, शरण परे की राख एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरी दुष्ट सवै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिया, सब बैरन को आज संगरिया। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे बरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। खुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु करियो रक्षा। राख लियो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनाया, देव दैत जक्षन उपजाया। आदंति कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। कट कट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट की पट पट की जानै। जब दुखरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब

करख करत हो कब हो, तुम मैं मृत दे तर सब हो। जीते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझो चारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद सांब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। पंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, याद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुजता शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट न ऐ है। रक्षा होए ताय सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शास वै सकै न कोई। एक बार जंत में संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुमरे, तबते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर,
ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੀ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द तां गावह हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रह हर नाल रह तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रह हर नाले सच साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जनिशा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियाँ यह वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनहो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां।
ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਵਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

जब लो नहीं पाग लीलारि उदय, तब लो प्रमति फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निहाले। चकवी सूरज हेत है, मिल होन सुखाले। नेहो कवल जल जानिए, खिड़ मोह वे खाले। मोर बबीहे बोल दे, वेख बदल काले। नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पीर मुरीदा पिरहड़ी, ओह निभ नाले। नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पीर मुरीदा पिरहड़ी, ओह निभ है नाले। सुकह टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशांदशाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावी साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशांदशाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना

जत सरी महला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंधकूपते लाव हो अपनी चरणी आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंधकूपते लाव हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान त्यान किस कर्म न जाना नाहिन निर्मल करणी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे यह नहीं मन मह तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावता।

सुख संपत माया रस मीठे, यह नहीं मन मह तरणी, हर दर्शन तृप्त नानक दास पावता।

0: बड़ी बड़ी हो डाया पर तेरा मर्तबा रंग बिरंग नेक ना जापन करतबा जियो अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कन मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दास दास तुद अगै बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तख्त महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्महदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै हे दूर जनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड विखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कह टल गुर सेविया एहनस सहज,

रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहे ना निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाभ हो बेखम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे एह नहीं मन मह तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत।

परगास गुरु का सदा घट घट परगास पया जस जन कै। एक पढ़ै सुनहै परगास गुरु का सदा घट घट परगास पया जस जन कै।

समरथ गुरु सिर हथ धरियो गुरु कीने कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरियो निस बासुर एक समान ध्यान सुनाम सुने सुत भान डरियो भन दास सयास जगत गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर

0: हर बार सबको पूरा आपे होवे, घटना कोई आखा पत परवाना पीछे पाइए, ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: वधी सुबह जग नानका सच्चा वेखै सोए सबनी।

दुख दारू सुख रोग पया जस पताव न होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफ सवाल योजन की सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पहयो।

आयो शरण जी के दानी, कारण कारण सम्राट श्री धर, राख ले हो नानक के स्वामी।

रे मन मूस बिला में गर्बत कर्तव करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगुना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोहो बड़ो सोकना बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत आउद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख।

अब आकाश नामावत बिष्टा अस्त कृम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो

0: बस राखो सरनाई, एक अरदास पाट कीरत की, गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेवियै, एह निस सहज सुभाई, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहद साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहद साहु, जिस पास

0: गुण जगियाइया तत् सबक नवे आपको परक नवे ना कोय तार तारा जू तोलिए नवे सो गौरा होय अपराधी दूणा ने वह जान जो हंता मृगा है शीस नवाय क्या थी है यारे दे कुसुदे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ भी भूखन सारंग त्रैपाल तिहाल बिचारंग गलमाला तिलक लिलाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्म कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक कहो नानक नहीं चो ध्यावे विण सतगुरु वाट ना पावे।

आवे सो अभेद कह के पाखियत छेद जो न जाए सो अछेद कह सुनाइए खंड जो न जाए सो अखंड जू को ख्याल की जाए ख्याल में न आवे गम तक सदखाइए जंत्र में न आवे अजय